वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

एक बार लक्ष्मण जी के मन में हनुमान जी के लिए ईर्ष्या पैदा हो गई। सोचने लगे कि मैंने तो बचपन से भगवान की सेवा की है और हनुमान कहलाते हैं राम भक्त हनुमान। हनुमान जी को मालूम हुआ और हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर दिखा दिया और सबने दर्शन किए भगवान राम के, हनुमान के अंतर में, हृदय में।

0: बिल्कुल दोस्तों, श्री राम और हनुमान जी के शुभ नाम के साथ हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि वो रूहानी आवाज है अनूप जलोटा जी की, और कुछ ही क्षणों में हम आपको बताएंगे कि आज के कार्यक्रम में हम क्या करने जा रहे हैं।
1: People always say to me, Barry, how do you keep your car running so smoothly? So, my car's a bit of a snob. It won't settle for just any filter. It demands man filters. So, I visit Goldwagen to get my man filters, those premium ones in those iconic yellow-green boxes. Honestly, I've tried telling my car who's in charge, but when it comes to trusted performance, the car wins. Man, the filter your car would choose, if it could talk. Goldwagen, keep on driving.
2: Business leaders like to talk about jobs and economic growth. They are parents too. Yet, they often don't talk about children.
3: That's funny, because their future bottom line depends on how well we grow. Hold our hands. It's time to talk about real growth. Visit holdmyhand.org.za.
4: You're listening to Geetanjali, Monday 6-7 PM, Lotus FM.
0: जी हाँ दोस्तों, आप वीना के साथ हैं, तो चलिए हम आपको बताएं कि आज के कार्यक्रम में हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे एक बहुत ही नेक विचार के साथ। एंड टुडेज लेसन डील्स विद टाइम, सो समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लिसन आउट टू। और आज के खास कलाकार है अनूप जलोटा जी। यू प्रोबेबली नो दैट ही सेलिब्रेट्स हिज 73rd बर्थडे ऑन वेंसडे द 29th ऑफ जुलाई। और प्रोग्राम के दूसरे भाग में हम एक बार फिर से थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे इस इडियम के साथ। और आज का इडियम है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना, वेल व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? इट्स सिंपल वन, एंड इफ यू नो व्हाट इट मींस, यू नो व्हाट आवर व्हाट्सएप नंबर इज टू सेंड अस योर थॉट्स ऑन अनूप जी, एंड ऑफ कोर्स व्हाट यू थिंक द इडियम उल्लू बनाना मीन्स। और कुछ क्षणों में, इन अ फ्यू मिनट्स, वी आर गोइंग टू लर्न सम हिंदी।
4: Lotus FM. It's in the music. Lotus FM.
0: And it is now time for us to learn some Hindi. As you do know, on Geetanjali, we have a special segment where we share with you a very special thought. Thereafter, we give you the English equivalent and try to decode some of the interesting words and grammar constructions that we come across. And today, we bring to you a beautiful piece that deals with time. We all know that time is really fleeting and things happen all the time. And this is what this particular piece is all about. And it reads like so. Badal jao waqt ke saath. Badal jao waqt ke saath. Ya phir waqt badalna seekho. Ya phir waqt badalna seekho. Majbooriyon ko mat koso. मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। सो ऑल ऑफ दैट विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लाइक सो। चेंज विथ टाइम और लर्न टू चेंज द टाइम्स, मीनिंग चेंज द सर्कमस्टेंसेस। डोंट कर्स योर चैलेंजेस और योर वरीज इन एवरी सिचुएशन। March onward, march forward. Lovely thought, isn't it? It's so easy to fall into the trap of really complaining about this, that and everything else. And then we just miss the moment to pull ourselves together and see what is there right in front of us. So let's take a look at the first sentence. It reads like so. Badal jao waqt ke saath. Badal means to change, and jao, you change. Achha? Badal jao waqt ke saath. Waqt means time. It's a very Urdu word. The more Hindi word would be samay. Achha? To samay ke saath, with time. So badal jao waqt ke saath. Change with time. The second line says, Ya phir waqt badalna seekho. Ya means or, phir, then, waqt badalna seekho. Waqt, as we already know, means time. Badalna seekho means you change times. You learned to change times. Learn to change the circumstances that you are in. And goes on to say, Majbooriyon ko mat koso. Majbooriyon ko mat koso. Majbooriyon simply means challenges. And we say, Majbooriyon core, because the core determines the form of the word majboori, cha, and it makes it a plural. We say majboorio, so that will simply mean challenges or worries. So majboorio ko mat ko, so don't curse your challenges. And koso means a curse. And the last sentence says, har hal me chalna siko. Har hal, har means every, hal means situation, and me means in. Chalna siko, chalna means to walk, siko means to learn. So in every situation, learn to march forward, learn to walk forward. I think a very interesting message there for us, which we can all use at all times of our lives. So the Hindi once again reads, badal jao vakt ke saath ya phir vakt badalna seekho, majbooriyo ko mat koso, har hal mein chalna seekho. And all of that into English would read like so: change with time, or learn to change the times, meaning change the circumstances. Don't curse your challenges or your worries. In every situation, march forward. Wonderful advice for all of us. I trust you picked up something wonderful in today's edition of Learning Hindi. And thank you for tuning in.
4: Life, the way you like it. Lotus FM. Lotus FM.
0: Well, I do hope you learned some good words in today's Hindi lesson. Aur hum karyakram ko aage badhayenge, matlab ki is antaral ke baad.
5: Sharpen your competitive edge and get ready for the next installment of the Tournament of Champions. Do battle on the biggest stage and prepare for an epic showdown as you fight for your share of the 500,000 Rand prize. Bet 2 Rand or more on selected spinner Zonke slot to blaze a trail to the top of the leaderboard and claim victory. T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp HELP to 076-675-0710.
4: You are listening to Geetanjali. Geetanjali. Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
0: बिल्कुल दोस्तों, प्रोग्राम है गीतांजलि, मैं हूँ आपकी वीना और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत रचना के साथ. बोल है नाम गुम जाएगा और इसमें हमें आवाजें दे रही हैं लता मंगेशकर जी और भूपेंद्र. एंड आई चोज दिस सॉन्ग पर्टिकुलरली बिकॉज आई हर्ड समवन सिंग इट ओवर द वीकेंड एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ व्हाट जावेद अख्तर साहब हैड सेड अबाउट लता मंगेशकर. ही सेज, व्हेन यू लिसन टू अ सॉन्ग लाइक नाम गुम जाएगा, देन यू नो दैट लता मंगेशकर जी इज द एपिटमी ऑफ परफेक्शन. लिसन आउट फॉर दैट.
6: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गई, चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया. मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया. गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है दरिया.